फिर बड़े ध्यान नाल आपां सतगुरां दे बचनां तों अपने मन की अवस्था नूं चैक करना कि साडा मन जिहड़ा है गुरमुख है कि मनमुख है। गुरबाणी गुरु सतगुरां ने दो करैक्टर साज के ज्ञान दिता सानू। एक नूं कहा है सुरती नूं गुणवंती, उन्हूं गुणवंती भी किया सुहागण भी किया, दूसरी नूं औगणवंती ते दुहागण किया। साडे मन नूं जिहड़े गुरु वल ने जिन्हां दे मुख दे विच गुरु है उन्हूं गुरमुख किया, उन्हूं संत किया, उन्हूं साधु किया, उन्हूं ब्रह्म ज्ञानी किया, ते जिन्हों भुलिया होया वा उन्हों साकत निंदक दुष्ट लिखिया गुरबाणी च। इदां आपां विचार सकते हैं अपने मन की पत्री कि साडा मन जिहड़ा वह किस अवस्था दे विच है। आखां जीवां विसरे मर जां, जे तुसीं कहने हैं गुरमुख है, जे मुख दे विच गुरु आ। गुरमुख की अवस्था शब्द च दस रहे ने, हर बिन रह ना सके मन मेरा, हर बिन रह ना सके, उहदे मुख च वाहिगुरु रहेगा, हर बिन रह ना सके। आखां जीवां विसरे, जिहनूं विसर जांदा उहनूं मनमुख कहिंदे आ। कहते मेरे प्रीतम प्राण हर प्रभ गुर मेले बौड़ ना भवजल फेरा, ये अरदास की गुरमुख ने। कहन लगा मेरे हीरे लोच लगी प्रभ केरी, हर नैनो हर प्रभ हेरा, कांखी एक है दरस तुहार। उन्होंने गुरमुख कहा जे इस दे मन की यह अवस्था वा, हौ रह ना सका बिन देखे प्रीतमा, मैं नीर बह बह चले जी। फिर सतगुरु ने उहदी सारी गुरमुख दी, कहिंदे सतगुरु दे कोल आउंदा वो। हुण तुसीं सारे सतगुरु दी शरण च बैठे हो, उत्थे बैठ के फिर नाम नूं दृढ़ करदे ने गुरमुख। कहिंदे सतगुर दयाल हर नाम दृढ़ाया, हर पद हर प्रभ केरा। कहिंदे सानूं फिर उह उस रस्ते ते गुरमुख नूं तोर देंदे ने जिहड़ा वाहिगुरु दे कोल जांदा, जिन्हों लिव का रस्ता रस्ता क्या। मनमुख जिहड़े धात दे रस्ते चलते ने, धात क्या पंजां नूं, है ना, तुद आपे पंज तत् करके विच धातु पंच आप पावे, हर आपे पंच तत् विस्तार विच धातु पंच आप पावे। मनमुख जिहड़ा वह पंजां दा संग करदा, काम करो लोभ मोह घर दे नाल चलता, उसनों कहते धात दे रस्ते चलता है। तो जो सतगुरु की शरण च आने सानू फिर लिव दे रस्ते तोड़ते ने, संत का मार्ग धर्म की पौड़ी सानू वड्डे भागां वाले बना देंदे। इत्थे उन्हां कहा कहते हर रंगी हर नाम प्रभ पाया, हर गोबिंद हर प्रभ केरा। जिहड़ा गुरमुख है वह नाम की प्राप्ति कर लैंदा, नाम च समाउणा सिख लैंदा। गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रिया समाए। कहते उहदे भाग चंगे ने, हर हिरदे मन तन मीठा लागा, मुख मस्तक भाग चंगेरा। हुण अगे मनमुख की कहानी शुरू की। कहते लोभ वकार जिन्ना मन लागा, हर विसरिया पुरख चंगेरा। कहते वह कित्थे फस गए, बैर विरोध काम क्रोध मोह, झूठ विकार महा लोभ तरो। इदा जन्म खराब कर गए। वह वाहगुरु नूं जिहड़ा चंगा पुरख आ, सतपुरख आ, अकाल पुरख आ, उसनूं भुल जांदे ने। उहनां नूं फिर मनमुख कहा। अगे सतगुरां क्लीयर लिख दिता, ओए मनमुख मूड अग्ञानी कही है, तिन मस्तक भाग मंदेरा। कहिंदे उहनां दे मस्तक ते भाग ही मंदे ने, जिहड़े गुरु की शरण च नहीं बैठते, नाम नहीं जपते,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਗਿਆਨੀ ਨੇ ਤੇ ਮੂਰਖ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਮਨਮੁੱਖ ਮੂਡ ਅਗਿਆਨੀ ਕਹੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮਨ। ਉਹ ਇਹ ਮਨਮੁੱਖ ਮੂਡ ਅਗਿਆਨੀ ਕਹੀਏ, ਤਿੰਨ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਮੰਦੇਰਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਮਨਮੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਮੁੱਖ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਉਹ ਮਨਮੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਮੁੱਖ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ, ਸੋ ਭਲਕੇ ਉੱਠਰ

थे। गावण तुदनो वीर करारे, गावण तुदनो पंडित पढ़न रघिसर। जुग जुग वेदा नाले, गावण तुदनो मोहणिया मन मोहन। स्वर्ग माछ पयाले, गावण तुदनो रतन उपाए तेरे।

सौ पुरख निरंजन, आर पुरख निरंजन, अरगम अगम अपारा, सब त्यावे सब त्यावे तुद जी, हर सच्चे सिरजनहारा, सब जी तुम्हारे जी, तू जिया का दातारा।

अंत जी तेरे क्या गुण आख वखाणा, जो सेवै जो सेवै तुद जी, जन नानक तिन कुरबाणा। हर ध्यावै हर ध्यावै तुद जी, से जन जुग मैं सुखवासी, से मुक्त भए जिन हर ध्याया जी, तिन टूटी जम की फासी। जिन निर्भउ जिन हर निर्भउ ध्याया जी, तिन का भउ सब गवासी। जिन सेविया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी। से धन जिन हर ध्याया जी, जन नानक तिन भल जासी।

जो तू दे सोई हो पाई रहाओ सब तेरी तू सबनी त्याया जिसनू कृपा कर है तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मन मुख गवाया तू तो आप भी छोड़िया आप मिलाया तू दरिया हो सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई ना है जी जंत सब तेरा खेल विजोग मिल बिछुड़िया संजोगी मेल जिसनों तू जाना है सोई जन जाने हर गुण सद ही आख बखाण जिन हर सेविया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया तू आपे करता तेरा किया सब होए

चौपाई अमरीकर हाथ रक्षा पूर्ण हुए चित्त की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा अमरे दुष्ट सब तुम गावो आप हाथ द मोहे बचावो सुखी बसे मोरो परवारा सेवक सिख सबाय करतारा मोर अच्छा निज करद करया सब बैरण को आ संगरिया पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रहे प्यासा तुम्हें शाड कोई अवरना त्याहूं जो भर चाहूं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारिया है चौन चौन शत्रु हमारे मारिया है आप हाथ दे मुझे उबर है मरण काल का त्रास निभर है जो सदा हमारे पच्छा श्री अस्तुजू करे हो रक्षा राख लियो मोय राखण हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुमह पुरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा बबतरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर विशन प्रकाशा सकल

भोग सवारा, नमस्कार है ताए हमारा। जमन काल सब जगत बनायो, देव दैत जच्छन उपजायो। आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिसही को हमारी, सगल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सेव गुण सुख दियो, सत्रण को बल मोबद कियो। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर स्थूला, सबर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछन्न, घट घट के पट पट की जन। जबद करक करा कर तारा, प्रजा तर्थ तब देहे अपारा। जब आ करक कर तो हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देहे तर सब हूँ। जेते बदन सठ सब तारे, आप अपनी बूझ उचारे। तुम सब ही ते रहत निरालम,

पंथ चलाया तब जगत में जब तुम करो सहाय दोहरा जी जे तुमरे ध्यान कहो निटुट ध्याय है संत अंत लहेंगे मुक्त फल पावेंगे भगवान दोहरा काल पुरख की देह मो कुटक बिशन महेश कोट इंद्र ब्रह्मा किते रव सस क्रूर जलेश दोहरा राम कथा जुग जुग अटल सब कोई भाकत नेत सुरगबा सर्ग भर करा सगरी पुरी समेत चौपई जो ए कथा सुने अर गावे दुख पावते निकट न आवे विशन भगत की ए फल होई आद ब्याद शब सगे न गोई सम्मद सत्रह सहस पचावन हाड बधी प्रथम सुख दावन त्व प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा भूल भरी लो लियो सुधारा दोहरा नेत्र तुमके चरण तार सद्रव तीर तरंग श्री भगवत पूर्ण कियो रघुबर कथा प्रसंग दोहरा साध असाध जानो नहीं बाद सुवाद विवाद ग्रंथ सगल पूर्ण कियो भगत

पुराण कुरान अनेक कहे मत एक ना मान्यो सिमृत शास्त्र भेद सब बहुभेद गहे हम एक ना जान्यो श्री आसपार

इतनी सेवा प्रवान करने जी कीर्तन कर दिया भुला दी माफी पुछना सिमरन जुड़ना करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

0: समाप्ति हो चुकी है। चलो सारे मिलके कहिए वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
1: Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why?

हाँ गुरु, हाँ गुरु, हाँ गुरु, हाँ गुरु, हाँ गुरु, हाँ गुरु, हाँ गुरु, हाँ गुरु, हाँ गुरु, हाँ गुरु, हाँ गुरु, हाँ

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

अमृत चाड़ बिख्या बिखाहे माया मो परम पै भुले सुत दारा से प्रीत लगाई एक

की गुरु रामदास राख सरनाई सुख टल गुरु सेविया एहन सो सहज सो पाए दर्शन परस्या गुरु के

गुरपुरै चरनी लाया हर संग सहाई पाया जह जाइए तहां सुहेले कर कृपा प्रभ मिले गुरपुरै चरनी लाया

संग जय मार के गण जाहना को सार का नाम ऊहा संग तो सा जय पेडे मन गुबार का नाम संग युदारा जहा पंत राखो न से जानु हर का नाम ते नार पछानु जय महाप्यान तप्त बहु काम ते हर के नाम की तुम ऊपर छाम जहाँ तिरखा मन तुझिया कर खै ते नानक हर अमृत बरख भगतना की वर्तन नाम संजना के मन विश्राम हर का नाम दास की ओट हर का नाम उदरे जन कोट हर दास करत संत दिन रात हर हर ओख साध कमात हर जन के हर नाम निदान पार ब्रह्म जन की नो दान मन तन रंग रत रंग एकै नानक जन कै वृद्ध बब एकै

जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खाट शास्त्र सिमृत वख्यान जोग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया सगल त्याग मन मदे फिरया।

जैसे जन को प्रभु दर्श पियासा नाने ताके बल बल जासा सगल पुरख में पुरख प्रदान सा संजा का मिटे अभिमान आपस को जो जाने नीचा सो गनिय सब चे ऊंचा जाका मन हो सगल की रीना हर हर नाम चिन काट काट चीना मन अपने देवरा मिटाना पेख सगल श्रेष्ठ साधना सुख दुख जन समदृष्टेता नानक पाप पुन नहीं लेपा निर्धन को तन तेरो नाओ ने थामे को नाम तेरा थाओ ने माने को प्रभु तेरो मान सकल कटा को देव दान करण करावन हार स्वामी सकल कटा के अंतर जामी अपने गत में तो जानो आपे अपन संगा प्रभराते तुम रियत तुम तय होए नानक वरना जान सकोए सर्वतरम में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जाप निर्मल करम सगल क्रिया में उत्तम क्रिया स्वासंग दुर्मत मल हिरिया सगल उद्यम में उद्यम पला हर का नाम जप हो जी सदा सगल बाणी में अमृत बाणी हर को जासु रसन बखानी सगल थान ते उत्तम थान नानक जे घट वसै हर नाम श्लोक निर्गुण यार एनया सो प्रभु सदा समार जिन किया तस चित रख नानक निबही नाल अष्टपदी रमैया के गुण चेत पराने कवन मुलते कवन दस्ताने जिन तो साज सवार सिगारिया गर्भगन में जिन्हें उभारिया बार बसता तुझे प्यारा दूध पर जोबन भोजन सुख सूद।

छपस नाहीं कद करे छपाया। बाहर ज्ञान ध्यान स्नान अंतर व्याप लोभ सुहान, अंतर अगन बाहर तन स्वाओ अगल पात्र कैसे तरया था। जाके अंतर बसै प्रभु आप नाल तन सह सुमत, सुनंदा कैसे मार्ग पावै कर गले ओर निभावै। कहाँ बुझारत बुझे डोराय नस्कैये तो समझे पोरा, कहाँ विष्णु बद गावै गंग जतन करे तो भी सुर भंग। कह पिंगल पर्वत पर पवन नहीं ओत ऊहा उत गवन, करतार करुणा में दीन बेनती करे नानक तुमरी कृपा तरै। संग साई सो आवे ना चीत, जो बैराई ता सुप्रीत, बलुआ के ग्रह पितर बसै नंद केल माया रंग रसै। दृढ़ कर माने

चरण मिथ्या स्वरण पर निंदा सुनया मिथ्या पर दर्व को हरा मिथ्या नेत्र पेखत पर तरया रूपाद मिथ्या रसना भोजनान स्वाद मिथ्या चरण पर बेकार को ताव मिथ्या मन पर लोभ लुभाव मिथ्या तन पर उपकार मिथ्या बास लेत बेकार बिन बुझे मिथ्या स्वप सफल दे नानक हरा नाम ले बिरथे सागत की आरदा साज बिना कह हो वह सूचा।

गोविंद पदन बिन बिरथे सब काम जय कृपन केन्द्रार्थ धाम धन धन ते धन जय कटबस्यो अरनाओ नानक तां कै बल बल जाओ रहत वर कथ वर कमावत मने प्रीत मुखो गण लावत जान नहा प्रभु परवीन बाहर पेख न काहू पीन अवरभ जैसे अपना कर आव जाव जन्म मर जिसके अंतर बस निरंकार तिसकी सिख तरह संसार जो तुम पन्न तिन प्रभ जाता नानी गुंजा चरण पर करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने।

वस्पति जय प्रसाद सती अमृत खा है तथा कृको राख मन माहे जय प्रसाद सुगंधन तन लाव है तिको सुमर परम गत पाव है जय प्रसाद सुख बस सुख मंदर तुसे त्याय सदा मने अंदर जय प्रसाद ग्रह संग सुख वसना आठ पहर सिमरो तिस रसना जय प्रसाद।

सुचेतारि जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप सुपर सिमर सदानूप जय प्रसाद तेरी निकी जात सो प्रभ सिमर

अमृत रसना दे प्रसाद सुसदेव सुना दे प्रसाद हस कर तल दे प्रसाद संपूर्ण फलाय दे प्रसाद परम गत पावै दे प्रसाद सुसाई समावै सा प्रभ त्याग अवर कतला गुरु प्रसाद नानक मन जाग।

प्रभु कृपा तय हो पर गास प्रभु दया ते कमल बे गास प्रभु सो प्रसन्न बसे मन सोए प्रभु दया ते मत उत्तम होए।

रचन सार्क संग एक ऊपर जतन साध के मामा बरन कौन पराने नानक साके शोभा प्रभ माए समाने सार्क संगा गोचर मिलाय सार्क संग सदा पर फुलाय साध के संगा वह बस पंचा सा संग मृत रस पुंचा सा संग सब की रेन सार्क संग मनोहर बैन

अपदन सा बड़ाई नान सा प्रभु बने आई साग संग न कबहुताव साग संग सदा सुख पावे साध संग बस गोचर लह साधु के संग अदर स्वह साग संग बस है थान ऊचय साधु के संग महल पहुचय साध के

ऐसा दिल के संग सो तन पावै जिस तन ते सब को बरसावै सा संग धर्म राय कर सेवा सा के संग सो बासुर देवा साधु के संग पाप लायन सा संग अमृत गुण गायन साध के संग सर्वथान गम नानक संग नानक साध के संग सफल जनम सा के संग नहीं कज काल दर्शन भेट तो निहाल साध के संग करो कतहर सा के संग नरक पर हर सा के संग इहा उहा सुहेला सा संग बिछर थर मेला जो इच्छा सोई फल पावै सा के संग न व्यथा जावै पार ब्रह्म साध रस नानक उदरै साध सुन रसै साध के संग सुनो हर राव सा संग के गुण गाओ सा के संग न मंत बिसरै सा संग सर पर निस्तराय साध के संग लगे प्रमिठा साधु के संकट का डिठा सा संग पे आज्ञाकारी सा संगत पे हमारी साध के संग मिटे सब रोग नाने सा पिटे संजोग साख मेद न जान जेता सुना तेता बखियान है

ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जन्म कमल लेप ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख जैसे सुर सर्व को सुख ब्रह्म ज्ञानी

ब्रह्मज्ञाने सदा सजागत ब्रह्मज्ञाने अवंते आगत ब्रह्मज्ञाने के मन परमानंद ब्रह्मज्ञाने के कर सदा आनंद

ब्रह्मज्ञानिका निर्मलमंत ब्रह्मज्ञानी दुष्कर प्रव्याप ब्रह्मज्ञानिका बड़ प्रताप ब्रह्मज्ञानिका दस बड़ भागी पाइय ब्रह्मज्ञानी को बल बल जाइय ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर नानक ब्रह्मज्ञानी आ परमेश्वर है।

ठाकुर ब्रह्म ज्ञानी के मत कौन बखानै, ब्रह्म ज्ञानी के गत ब्रह्म ज्ञानी जानै। ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता, ब्रह्म ज्ञानी सा जीव नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी मुख जगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता। ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सभी उपर हाथ।

सकल परम कर पूज सकल पार ब्रह्म सास पापा मल खोवे तस भगवती की मत उत्तम होवे भगवंत की टहल कर नृत नीत मंत्र निरपे विष्ण परीत हर के तन हृदय बसावे नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे सो पंडित जो मन पर रो बोधय राम नाम आत्म सोधय राम नाम सार रस पीवे उस पंडित के उपदेश जग जीवे हर के कथा हृदय बसावे सो पंडित फिर जो न आवे वेद प्राण सिमरत बुझे मूल सुख में जाने असूल चौवन को दे उपदेश नानक उस पंडित को सदा देश

बृहस्पति कई कोटि पुजारी कई कोटाचार्य व्यवहारी कई कोटि तीर्थवासी कई कोटि वन परम उदासी कई कोटि वेद के श्रोते कई कोटि तपिश्र होते कई कोटि आत्म ध्यान धार है कई कोटि कव का विचार है कई कोटि नवतन नाम त्यावे नान करते कांत न पावे कई कोटि पाए अभिमानी कई कोटि अंध अज्ञानी कई कोट कृपन कठोर कई कोट आवेगातम ने कोर कई कोट पर दर्भ को हरे कई कोट पर दुख न करे कई कोट माया शर्माए कई कोट परदेश प्रमाए जित जित लाभ तित तित लगना नानक करते की जाने करता रचना कई कोट सजत जोगी कई कोट राजे रस भोगी कई कोट पंखी सर्प पाए कई कोट पाथर बिरक निभाए कई कोट पौन पानी बसुंदर कई कोट देश भूमंडल कई कोट सस्य सूर नक्षत्र कई कोट देव दान मंद्र सुर शतर सकल समग्री अपने सुतारे नान जिस जिस पावे तिस तिस निस्तारे कई कोट राज ताम सात कई कोट वेद प्राण सिमरत स अर शास्त्र कई कोट की रत्न संबंध कई कोट नाना प्रकार जंद कई कोट की अचर जीव है कई कोट ग्रीमर स्वरण थी वे कई कोट जा किन्नर पे साच कई कोट भूत प्रे सुकर मेरे गाच सब ते नेरा सब ते दूर नानका पलब त्रेहा पर पूर कई कोट पर ताल के वासी कई कोट नर सुर निवासी कई कोट जन्म जी में मरे कई कोट ब जो नहीं फिराए कई कोट बैठ दिखाए कई कोट काले थक पाए कई कोट की यतन मंद कई कोट माया में चिंता जय जय भाणा तय तय राखे नानी सब के प्रभु के हाथे कई कोट पै बैरागी राम नाम संग तिन लागे कई कोट प्रभु को खोजन ते आत्म में पार ब्रह्म लहंते

कैकोट खंड यर खंड कैकोट आकाश ब्रह्मांड कैकोट हो अवतार कई जुगत किन्नो विसार कई बार पसरे उपासार सदा सदा एक एकांकार कैकोट किन्ने बोपा प्रवते ब्रह्मा समात तांकांत न जाने कोय आपे आप नानी प्रसोय कैकोट पार ब्रह्म के दातन अवतातम प्रकाश

नित मैं बसा कबो सो घर खुरंगा स्वय कबो नंद जिंद व्यवहार कबो बात पायाल कबो बेता ब्रह्म विचार नानिका मिला बनहार कबो नृत्य करे भोपाल कबो सो रह दिन रात कबो महाक्रोध विकराल कबो सर्व के होत्रवाल कबो होय बह बट राजा कबो बेकारी।

कबो होय पंडित करे बख्यान कबो मुन तारी लावे ध्यान कब तर तीर्थ स्नान कबो शिव साधक मुख ज्ञान कबो कीटस पतंग होय ध्यान धुन परमे परमिया नाना रूप जब स्वांगी दिखावे जो प्रभ पावे तिवन चावे ज्योत पावे सोई होय नानक दूजा बना कोय कबो सा संगत पावे उस संत बरना आवे अंतर हो ज्ञान प्रकाश स्थान का नहीं विनाश मंत्र नाम रतय करंग सदा बस पार ब्रह्म का संग ज्यो जल में जलाय खटाना त्यों ज्योति संग जो सुमाना मिट गए।

जिसके अंदर राजा विमान सुंदर पति वसुआन जो जाना मधुबनवंत सोवत विशाखा जंत आपस को करवंत कहा वह जन्म रोजन परमा वह तन भूमिका जो कर गुमान सो मूर खंदा ज्ञान कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसा वह नानक अमृता के सुपा वह तनवंता हुए कर कृपा वह तिर समान का संग न जावै बोलस कर मान के ऊपर करे आस पर मित्रता का हुए विनाश सब ते आप जाने बलवंत किन में हो जाए पशुमंत किसे न बदे आप अहंकारी तनम राय करे खुआरी गुरु प्रसाद जाका मिटे अभिमान सो जन नानक दरगाह परवान कोट कर्म कराय।

दुर्गा को कैसे गावे, आपद को जो भला कहावे, तिसे भलाई निकट न आवे। सर्व के रहन जा कामन होए, को नानक ताके निर्मल सोए, जब जाने मुझसे कछ होए, तब इसको सुख नाही कोए। जाबे जाने मैं किसी करता तब लग

सिमर सिमर सिमर प्रसोए नाने विघ्न लागे कोई उतर मन में कदरंकार कर्म मेरे सदव्यवहारे निर्मल रसनामृत पियो सदा सुहेला कर ला जियो नैनो भेख ठाकुर का रंग स्वास संग मेरे सब सब संग चरण चलो मारो गोविंद मिटे पाप जपिया अरविंद कर हर कर्म सर्वनार कथा हर दुर्गा नानक उज्जल मथा बड़पागी तेजन जग माए सदा सदार के गुण गाये राम नाम जो कराय विचार से तन बंद गणि संसार मन तन मुख बोले हर मुखे सदा सदा जान ते सुखी एको एक एक पहचान तुद की सो जी जाने नाम संग जिसका मन मान्या नाने तेरे निरंजन जाने गुरु प्रसाद अपना सुजय जिसकी जानो तृष्णा बुझाए

प्रभु की गला बिना कहता आवै देखो है बह दार्थ दिन अर्जाने का बार जिस गुरु प्रसाद टुटे हो रोग नानी सोजन सदा रोग जो मंदिर को थामे थमंदे गुरु का सुध मने असमंदे पखान नाव चढ़ तरह प्राणी गुरु चरण लगत निस्तर है जो अंधकार दीप प्रगास गुरु दर्शन देख मन हो बिगास जो माव ध्यान में मार्ग पावे तुम साधु संग्रह जो प्रगटावे तिन संतन के बाचो टूर नन केरल उचा पूर मन मूर्ख काहे बिरलाइए पूर्व लिखे का लिखिया पाइए दुख सो प्रभु देवन हार वर त्याग तुत सहज तार जो कज करे सोई सुख मार

सब कोए मुख उज्जल हर दरगाह सोए एहो व्यापार विरला व्यापार नाने तांख्या सद बल हरे चरण साध के तोय तोय पियो अरब साध को अपना दियो साध के तोर करो स्नान साध उपर जाइये कुरबान सा सेवा उड़ पागी पाइये साध संगर कीर्तन गाइये।

सबते हो निर्मल करनी कर कृपा जिसको नाम दिया नानक सो जन निर्मल थी आजा कमन गुर की परते जने आवे हर प्रवचित भगत भगत सुनिया तैलो ए जाके हृदय को हो सत करनी सहित की रात सत हृदय।

द्रौपदी अविनाशी ब्रह्म में राख मन कितु प्रत्याग्त प्र नोय सर्व नरंतर सोये अपे बिना अपे धन गैर गंभीर गिर स्वजन पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा ने धन दयाल संसा तेरे की चरणी पाओ नानक कह मन अंदर आओ मन सा पूर्ण शरण जो जो कृपाया सोई होगा। हरण पर नेत्र भोर तिसका मंत्र न जान हो रो मंगल सजा के सर्व तोषणी करता के राज में राजोग में जोगी तब मत विसर के समय भोगी त्याए त्याए भगता सुख पाया नाना तिस प्रकार के नियंत्रण पाया जा के लीला की वंदनाए सगल देवारे अवगाय पिता का जन्म का जान पो सगल परो ही अपने सूत सुमत ज्ञान त्यान जंद जंदास नाम त्या वैसे तो गुण में जा को परमाए जन्म रह प्रया वे जाए ऊचने तिसके आसान सजना वे तैसा नानी जान नाना रूप नाना जा के रंग नाना पे करें करंग नाना बिलकिनो विस्तार प्रभ न सी एक अंकार नाना चल कर खिन माए पूर्य पूर्ण सब ठाए नाना विद कर बंत बनाई अपनी कीमत आपे पाई साब करते के सब तिसके ठाऊं जब जब जीवे नान कर नाओ नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मंड नाम के तारे सिमरत वेद पुराण नाम के तारे सुन ज्ञान ध्यान नाम के तारे आकाश पताल नाम के तारे शुक्लाकार नाम के तारे प्रियंसा पवन नाम के समुद्र सुन सरवन कर सपने नाम लाए नाने चौथे पद में सोचन गत

सब सब सारी अपे गुण कारी सब सत सब प्रभक्ता सुर सत सज सुनता भोजन हर को सब हो नान सत सब प्रभ सोए सत सुर जन मान्या करण क्राम त्रमूल पछान्या।

ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी, ठाकुर का सेवक सदा पधारी, ठाकुर के सेवक कैमर पर तीत, ठाकुर के सेवक के निर्मल रीत, ठाकुर को सेवक जन संग, प्रभु का सेवक नाम के रंग, सेवक प्रभु पारण हारा, सेवक की राखे निरंकार, सो सेव जया प्रभु तारे, नानक सो सेव सास सास मारे, अपने जन का प्रदाता के, अपने सेवक के सर पर राखे, अपने दास को देव बटाई, अपने सेवक को नाम जपाई, अपने सेवक की आप तराखे ताकि गात मित कोई ना लाखे, प्रभु के सेवक को न पहुंचे, प्रभु के सेवक को उचे उचे, जो प्रभु अपनी सेवा लाया, नानक सो सेवक दया प्रगटाया, निकी किरी मैं कल राखे भसम करे।

पौतपुराणी अगम गोत्र परम निर्वाणी निराहा निर्भय सुखदायी तंकी किम दिखने न पाई अनेक भगत बंदन निधकाराचरण कमल हृदय सुमराय साध बलिहारी सदगुरु।

नाम ले साचे उपदेशे वको दे मोह माया के संग न लेप मन में राखे हरे हरे को अंधकार दीपक प्रकाश नाने परम दुख तैसे न सहे तब तुम्हें ठांड बरताए आनंद ब्याज नाटे पाए जन्म के मिटे अंधे से साधु के पूर्ण उपदेश पहु चुका निरपोह बसे सगल ब्याह मंत कह न सह जिका साधन कृपा धारी सा संग जब नाम मुरारी थित पाए चुके ब्रह्म गमन सुन्ना निकर जस सर्वन निर्गुण अवसरगन पियो ही कला तार जन सगली मोही अपने जे प्रभा बनाए अपनी कीमत आपे पाए अरबन दूजा नाही कोय सर्व निरंतर को सोए और पोद्रव्या रूप रंग पै प्रगा साध कै संग

तो क्या लपटा मैं मूर्ख मना सो तुम यदि कुटम्बर बिन्ता इंत कहो हो तुम कवन सना था राज रंग माया विस्तार इंत कहो हो कवन छुटकार स्वस्ति रस्वारी चुटा डम चूठ पासारी जिन दिए तस बुझे न बिगाना न विस्तार नानक पहचाना गुर की मत ले आने भगत बिना बहु डूबे सियाने हर की भगत करो मन मींदर मन होए तुम्हारो चीत चरण कमर राखो मन माहे जन्म जन्म के कल बख जाए आप जपो अबरा नाम जपाओ सुनत कैद रहत कर पाओ सार पुर सतर को नाम सह सुबह नानक गुन गाओ गुन गाव तरी उतर सुमैल बिन जाय हो मैं बिग फैल होए अचंद बसे सुगनाल सास ग्रासर नाम समाल छाठ सियान सगली मना सासंग पावे सच तना हर पुंजी संज करो बिहार या सुख दरगे जयकार सर्व निरंतर एको देखो नाना जा कह मैं सगल एक एको जप एको सला एक सिमर एको मन आहे एक के गुण गाओ अनंत मंथन जाप एक भगवंत एको एक कर पूर्ण पूर्य प्रव्याप अनक विचार एक तय एक रात प्राचुत गय मंत्र अंतर एक प्रव्रता गुरु प्रथा नानक जाता श्लोक

हम निर्गुणिया नीचया जान नान तुमरे सर्वप्रभु भगवान सर्व वैकुंठ मुख तुम मुख पाए एक निम करके गुण गाए अनक राय भोग बढ़ियाई हर के नाम की कथा मन पाए भो भोजन का प्रसंगीत रसना जपते हर हर नीत भली सुकरणी शोभा तनवंत हृदय से पूर्ण गुरु मंत सात संग प्रभ देहो निवास सर्व सो नानक प्रगास सलोक

तब हर सुख से व्याप्त जब अपने आप पार ब्रह्म तब मोह कहाँ किस होवत परम आपन केला वर तीजा नान करने न दूजा जब हो प्रभु केवल तनी तब बंद मुकत कहो किस को गनी जब एक कह रहा गम अपार तब नरक सुर को कौन अवतार जब निर्गुण प्रभु सैब सुबाए तब शिव सगत कहो कित ठाए जब आप अपने जो तरे तब कवन डर कवन कत डर अपन चलता करने हार नानी ठाकुर गम अपार अविनाशी सुख अपना सुन त जन्म मन को काम बिना सुन जब पूर्ण करता प्रभु सोए तब जम की रात कहो केसो होए जब विगत गोचर प्रभु एका तब चेतर गुप्त कृत पुछ लेखा जब ना निरंजन गोचर गाधे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे

अनेक प्रकार के उपख्यान आपन खेल आप कर देखा है खेल संकोच नानक के क्या जय भगत भगत है आप जय पसर पसार संत प्रताप।

आप कथे आप सुनने हार आप का विस्तार जत पावे तिष्ट पाए अपने भाने ले सुमाए तिस्ते पर नहीं किस होए आपन सो सब जगत परोए जा को प्रभ जी आप जा

आज्ञा वे आज्ञा जाए नानी दापा वे तन लय सुमाये से वे सुना ही बुरा उरे कहो के ने कछ करा अपला कर तू तने किया पै जाने अपनी जी की आप सहायतारी सब साथ उत्पोत अपन संग्रह इतना की कदम कही न जाए दूसरो इतना सोची पाए तिसका किया सब प्रवान गुरु प्रसाद नानक हो जान जो जाने ते सदा सुख होए आम लाए लय प्रभ सोए ओ तनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुक्ति।

Solok Pura Prabhya Radhya Pura Jankanao Nanaka Pura Paya Pura Ke Gunga Vaspadi Pura Gurka Sunyavadez Par Brahm Nikta Karpe Kosa Sa Simra Go Benda Manantar Ki Uttara Chendu As Anitya Goh Taranga Sanjana Kitu Rumana Manga आप छोड़ बेनती करो सत्संग अगन सागर तरहो हरदन के परल्यो भंडार नानक गुर पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद सत्संग पद परमानंद नरक निवार उदारो जियो गुण गोबिंद अमृत रस पियो चित चित्त बहो नारायण एक एक रूप जाके रंग आने

तंत्र तंत्रं सदा सचिदानंद सर्वं प्रणासी अनूपे अनूपे समह तुल निवासी सदा सिद्धदा बुद्धदा बृद करता अदो उर्द अर्दं अगं ओघ हरता।

0: कह पिछा पछताए
1: कागत कलम लिखनहार
0: सुने गावह करन विचार
1: ऐसा नाम निरंजन होए
0: देखो मन जाने मन कोए
2: मन्ने सुध होवे मन बुद्ध
0: मन्ने सकल भवन की सुध
2: मन्ने मोह छोटा ना खाए
0: मन्ने जम के सास न जाए
1: ऐसा नाम निरंजन होए
0: देखो मन जाने मन कोए
2: मन्ने मार्ग ठाक न पाए
0: मन्ने पातशाह प्रगट जाए
1: मन्ने मग्न चले
0: मन्ने धर्म से ती संबंध
1: ऐसा नाम निरंजन होए
0: देखो मन जाने मन कोए
1: मन्ने पा

0: चित पतलिख जान है लिख लिख धर्म विचारे
1: ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सवारी
0: गावे इंद्रासन बैठे देवते आदर नाले
2: अंदर गावन साध विचारे
0: गावन जति सती संतोखी गावे वीर करारे
1: गावन पंडित पर्वती सर

0: भगवती चंद पर प्रसाद करते के अच्छे देश के अपिज बेचा
1: क्या गज कर में क्या पांच पर में
0: क्या पिज लोके के अद पिज लोके अद सो के
1: क्या दूध बनना के प्रभुत करना
0: राजन कुर्बा है के तरमंग तो या है
1: क्या सो बनना के सर्वा बनना
0: के जगतम के

0: बुद्धि विरक्त है ना से प्रकाश है
1: निश्चिंत सुनित है लिख है देख है
0: अलेख है अपेक्ष है अटार है गा है
1: सब है गम है नील है नाद है
0: अनिथ है सुनित है जात है जात है चुप संत है प्रसाद सर्वं भंता सर्वं गंता
1: सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता
0: सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता
1: सर्वं प्राण है सर्वं त्राण
0: सर्वं कर्मं सर्वं परमं
1: सर्वं ज्योता सर्वं मुक्ता
0: प्रसाद छंद है प्रसाद मोनक न से सदैव प्रकाश
1: अनंगन स्वरूप है पंगम विपूते
0: परमात्म परमाते सदा सर्व साथ है
1: अगाध स्वरूप है निवाद विपूते
0: अनंगी है नाम है चिराग है
1: कामन करीम है के राज रहीम है
0: रोजी दहन है के राज रहिंद है
1: करीम कुमार है के सुनो जमान है
0: गरीब उल कराच है गरीब उल निवाच है
1: हरीफ उल सिकन है रासल फिकन है
0: कलंक पुनास है समस्त निवास है
1: अगंज गनीम है रजाय करीम है
0: समस्त जुबा है कि साहिब करा है
1: कलंक पुनास है बेस्तुल निवास है
0: ये सर बिल गवन है मेसर रवन है
1: तमाम तमीज है समस्त लजीज है
0: परम परम ईश है समस्त लजीज है
1: अदेसो लेख है मेसो लपेख है
0: जमीनो जमान है मीकल मार है
1: क्रीमो कमाल है कि जोत जमाल है
0: क्या चंद प्रकाश है के मित्तो सुभाष है
1: क्या जप स्वरूप है के मित्तो विभूत है
0: क्या मित्तो बसा है के आत्म प्रभा है
1: क्या चंद अनंग है के मित्तो अपंग है
0: मद भर चंद भय प्रसाद मन मन प्रणाम गुण गुण मदान
1: हर भर गंज हर नर पर पांच
0: अंगन प्रणाम मन मन सलाम
1: अनर खंड बनर मंड
0: अन पवना मन मन प्रकाश
1: गुण प्रणाम जल थल मदान
0: अंचे चांग गास न पांग
1: अपमा पार गत मित दार
0: जल थल मंड दस सपांड
1: जल थल महंत दस विस ब्यांत
0: अन पवना अस्त्र

0: आदिरकरम अतिरकरम
1: अनंत दाता महंत
0: और मोड बनाशन तो प्रसाद करनालय है और कल्य है
1: कलखंडन है महामंडल है
0: जगदेश्वर है परमेश्वर है
1: कल काल है सर्ववार है
0: त्रस्त के चरण है जग के कर्ण है
1: मन मान्य है जग जान्य है
0: सर्वंग पर है सर्वंग काश है
1: सर्वनाश है सर्वनाश है
0: करुणाकर है विश्वंभर है
2: सर्वेश्वर है जगदेश्वर है
0: ब्रह्मंडस है कलखंडस है
1: पते पर है करुणाकर है
0: जप जप है थप थप है
1: कृता कृत है मृता मृत है
0: मृता मृत है करुणा कृत है
1: कृता कृत है तरणीत रित है
0: अंतेश्वर है परमेश्वर है
1: कृता कृत है मृता मृत है
0: अरवा कृत है मृता मृत है
1: नायक है कर्कायक है
0: विश्वंभर है करुणालय है
1: नायक है सर्वपायक है
0: पंचन है अर्गंजन है
1: प्राप्तन है जप जापन है
0: अकलंकृता सर्वाकृत है
1: कर्ता कर है हर्ता हर है
0: परमात्मा है सर्वात्म है
1: आत्मवस है जस के जस है
0: प्रयाग प्रयाग चांद नमो सूर्य नमो चंद्र

0: श्री एक ओंकार सदगुरु प्रसाद पाशाह दसवीं तवा प्रसाद स्वीय श्रावक सोत समूह सदान के देख प्रयोग कर जोग जति के
1: सोर सरातन सोत सदाक संग समूह अनेक मति के
0: सारे देश को देख रो मत कहू न देखिए तो प्राण पति के
2: श्री भगवान की पाए कृपा हो ते गति जीव अनेक मति के
0: माते मत अंग चले जर संग नूप तंग सरंग सवारे
2: कोट तनंग करंग से कुगत पान के कौन को जात ने वारे
0: बारे बजान के पूपली बेद नाव तसीस न जात बिचारे
2: ए पे तू कह पे तू जीत
0: फिरे सब देश तसान को बाजत डोल मंदरंग नगारे
1: गुरु जान की सुंदर सखी है राज हजारे
0: पूत फेक पान के पूपत कौन गने ने जात बिचारे
1: श्री पत श्री भगवान पजे बिन अंत को अंत के धाम सुधारे
2: तीर्थ नाम दया दम दान
0: सो संजम नेम अनेक बिसेख है
2: वेद पुराण कते प्राण जमीन जवान समान की देख है
0: कौन हर जति जत तार सबे सो विचार है जार के देख है
2: श्री भगवान पजे बिन पूपत एक रति बिन
0: सत सपा दरंत दबास साज सुना दर जान दलेंगे
2: कर पर्वत पंख लेना हलेंगे
0: तोर रेन मरोर में वासन माते में तंगन मान मलेंगे
2: श्री पद श्री भगवान कृपा बिन त्याग के हान निदान चलाएंगे
0: मेरा पार बटे प्यार अपचारे सार के तार पिछैया
2: तोर तेज मलिंद मवासन माते के जान बेमाल बलिया
0: कारे गुरान के तोर ना सो बातन ही चकचार लवैया
1: साहिब श्री सब को सुनायक जात के नेक सो एक दवैया
0: दाना देव अनेद साचर पूत पवेक भगवान जपेंगे
1: जीव जिते तल में सल में पल ही पल में सब साप तपेंगे
0: पुन पर तापन बाढ़ जाए तुन पापन के बहु पंज कपेंगे
2: सात मुंह पुसान फिरे लोग सतन से बह गए लोग चपेंगे
0: मानव इंद्र को जंदर निर्दाय पर जोन तो लोग को राज करेंगे
2: कोट स्नान गजाए गदान अनेक सोम बर साग भरेंगे
0: ब्रह्मेश्वर विष्णु सची पात अंत फसे जम फास परेंगे
2: जीवन श्री पटके पड़ा से पकते न फेर न दे तरेंगे
0: कहा पे जो दो लोचन मुंह कह बैठ रहे हो भक्तान लगाया
2: मत फिरो ये सास समुद्र लोग
0: बैठ के ऐसे ही ऐसे सो बैस बतायो
2: आज कहो सुन लियो सब प्रेम
1: प्रभ पायो
0: कहो ले पान पूज तरह सिर कहो के कहो ले लिंग कर

0: किया जाए।
1: अनेक जूनी परमात्मा सतगुरु मुक्त न पाए,
0: फिर मुक्त पाए लाग चरनी सतगुरु सब सुनाए।
1: कहना विचार देखो फिर सतगुरु मुक्त न पाए,
0: आओ सिख सतगुरु के प्यारे गावो सच्ची बाणी।
1: बाणी तो गावो गुरु केरी बाणी सर बाणी,
0: जिनको नदर कर्म होवे हृदय तना समाणी।
1: जीवा अमृत सदा सोरो हर हम जपियो सारंग बाणी,
0: कह नानक सदा गावो यो सच्ची बाणी।
1: सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी,
0: बाणी तक कच्ची सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी।
1: कहंदे कच्चे सुनदे कच्चे कच्ची आंख कानी,
0: हर हर ते करे रसना कहया कछु न जानी।
1: चित जिनका हिल्या माया बोलन पैर वाणी,
0: सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी।
1: गुर का शब्द खर है सीढ़े जित जड़ाओ,
0: सब रतन जन मन लगाए हो आसमाओ।
1: सब सीधी मन मिलया।

0: हर आप मुल्क है मुल ना पाया जाए ऐसा सतगुर जी मिले तिष्णु से सौंपिए विचो आप जाए
1: जिसका जीव तिस मिला रहे हर भरोसे मने आए
0: हर आप मुल्क है पाक नौ के नौर का जिन्हों पिल दा पाए
1: हर आस मेरी मन मन जा रहा
2: हर आस मेरी मन मन जा रहा सतगुर ते रास जानी
0: हर हर नित जपे हो जियो लौ कटे हो तिहारी
1: एहो तंग तना मिले हर आपे पाना
0: कह नानक हर आस मेरी मन हो मन जा रहा
1: ए रसना तुन रास रच रही तेरी प्यास न जाए
0: प्यास न जाए होटत कितना है जिचर हर आस पल्ले न पाए
1: हर रस पाए पल्ले पिए हर रस बोर न तिसरा लागे आए
0: हर रस कमी पाए सच कुछ मिला जिस

0: सुनी मन तन हरिया हुआ रसना रस समानी
1: साचा लख वडानी ताकी गत कही न जाए
0: जय नाल अमृत मान सुनो पवित्र हो साचे सुन नैनो पठाए
1: हरजियो गुफांद रखे वाजा पवन बजाया
0: बजाया वाजा पवन नौ दुआए प्रकट किया दसवा गुप्त लिखाया
1: गुरुद्वारे लाए पावनी एक नंद स्वर द्वार दिखाया
0: ते अनेक रूप नौ नव निद दृष्टांत न परचाई पाया
1: जय नानक हर प्यारे जियो गुफांद रखे वाजा पवन बजाया
0: साचा सोलो साचे कर
1: कावता सोलह कर साचे जिथे सदा सच ते आवे
0: सचो जय याद पावे मुक्ति ना बजावे
1: एओ साच सबन का खसम है जिस पक्षे सोजन पावे
0: कह नाम साच सोलो साचे कर पावो अनार सुनो।